क्या बात है, क्या चाल है सब दे? उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो, एंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नु। शाम दे विच जुड़ चुके हैं थोड़े नाल एक बार फिर प्रोग्राम पंजाबी लहरां दा, कि ठीक 9 बजे तक थोड़ियां साडियां गल्लां बातां होणगियां। लाउने आ रौनकां, सजाउने आ अज दी शाम नु, ते हैप्पी मंडे भाई।

सतगुर होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हूँ चूरी है, सतगुर होए दयाल तो हर रंग जानिए, सतगुर होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं मानते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके

0: ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ।
1: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲੀਡਸ ਵੀ ਪਾਓ।
0: ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇੰਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
1: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹਰਦੀਪ ਪੰਦੇਰ ਨੂੰ
0: 905-671-2000-9056712000।
1: ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਓ।
2: ऑटो ओनर्स, क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है? अगर आपके पास जी या जी टू लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए।
3: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें, जो आपको अच्छा प्रीमियम, ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे। अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं। ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810।
4: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे हैं, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे हैं, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो आनू डेट नो प्रॉपरली असेस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिए आज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200।
5: ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫਰਨੀਚਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਸਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਸਟਮ ਸੋਫਾ, ਲੈਦਰ ਸੋਫਾ, ਸੋਫੇ, ਡਬਲ ਬੈਡ, ਮੈਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਕਾਸਾ ਫਰਨੀਚਰ, 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਫਾ ਮਾਰਟ, 24 ਰੀਗਨ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 905-803-8056।
6: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: इसमें सारांश कोई क्रेडिट चेक वगैरह भी होता है?
1: यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, आपको बैंक नहीं कर रहा, बैंक को चाहिए अमीर लोग, गवर्नमेंट इन देशों में हेल्प करती है जिनकी लो इनकम है, कम इनकम है, तो इसलिए अगर आपकी इनकम कम है आप सेल्फ एम्प्लॉयड है आप तभी हमें कॉल करें, तभी आपको इसका बेनिफिट है। डॉक्यूमेंट भी क्या लगते हैं जी, नोटिस ऑफ असेसमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, जितना ज्यादा फैमिली साइज है आपका, जितनी कम कम कम इनकम आपकी नोटिस ऑफ असेसमेंट है उतना ज्यादा ज्यादा ज्यादा फायदा है, कोई हेरा फेरी नहीं है। क्यों? डॉक्यूमेंट लाइक सर्विस कनाडा पे आपके पास पहले से ही है यार, NOA, बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें क्या हेरा फेरी करेंगे? आपको सेटिंग हुई कमीशन कोई परसेंटेज नहीं है, काम होने के बाद हमारी $20.99 से $4.99 है, यस आपको बेनिफिट इतना ज्यादा है, कुछ छूट नहीं है इसके अंदर।
0: ठीक है, तो एक बारी अपना एड्रेस फिर से बताएं और अपना नंबर दें अच्छे से।
1: हाँ जी, सो एड्रेस है 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड, अरेटोरी डेयरी पे, ऑफिस आप आ सकते हैं जब आपका मन करे, टीम होटल में नहीं मिलते, प्रॉपर ऑफिस है हमारा, गवर्नमेंट जितनी डेंटल बेनिफिट इतनी तरह के बेनिफिट, चाइल्ड बेनिफिट पे स्पेंड करती है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है एजुकेशन पे, हमारी फीस काम होने के बाद है, आपको इसमें अच्छी फंडिंग मिल रही है जी, बाद में मौका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? 1 अगस्त के बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है, 2 बैच रह गए हैं, एनरोल करें, नहा लें, अगर आप अपने 5 दोस्त को फोन लगाएंगे, 3 पहले से एनरोल हो चुके हैं, उनमें से 2 हमसे हुए हैं, आप पीछे ना रहें, नंबर नोट करें 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, हुणे कॉल करो ते ला लो 437-264-3175
0: जी। थैंक यू सरांश, थैंक यू, सरांश नु भी एन पंजाबी आ गई, लाहा लो है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, हमें डेटा लोगे एमएसडी के साथ तो डेटा लगे पूरा सही से।
0: ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू जी।

0: यार इना इंश्योरेंस ने तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा।
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
1: कॉल करो 20 सालों दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
3: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रेल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री कट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बार फिर थोड़ी प्रॉपर्टी लिस्ट कर दिया ने। रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह दी तिखी नजर थोड़ी प्रॉपर्टी वेचने दे खरीदने विच थोड़ी हेल्प कर सकती है। नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नु फोन करो 647-740-9600 647-740-9600 दे कॉल की जा सकती है। थोड़ा अपना राइटर रेव सिंह।
4: आप पंजाबी आ गए
5: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
6: तुसी अपने फोन प्लान पे बहुत पैसे दे रहे हो। सेलुलर पॉइंट ते असी तो हाड़े ली लेके आया बहुत ही बड़ी सेविंग्स। बेस्ट फोन प्लान्स ते बिना किसे शर्त तो। चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान्स जो सेविंग चाहने हो। No contract option या latest phone चाहिदा सब तो best coverage नाल। Cellular point ते तुहानू सब कुछ मिलेगा। Visit करो Cellular point, save today, it's that easy. अपनी nearest location cellularpoint.ca ते वेखो। Cellular point, more phones, more plans, more choice.
3: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे हैं। डॉक्टर कुमार लेडीजा के मर्दा के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा मार्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो।
7: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स पेस्ट्रीज मिठाइयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचण वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।
8: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900

0: 147 864 8000।
1: बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार नंबर है वकार खान साहब जी, दोबारा दे रहे प्लीज।
0: सर नंबर है 647-864-8000-647-864-8000।
1: शुक्रिया सर आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम पंजाबी विरसा गल्लां बातां सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। और इस नाल ही मैं एक गीत की जी फरमाइश की थी, वो गीत थोड़े पास जरूर जाऊँगा। रेनू जी द मैसेज आया, रेनू जी थैंक यू वेरी मच, और तुसी भी प्रोग्राम सुन रहे हो और गुड विशेज तुहाडे वल्लों भी भेजिया जा रही हैं। और यह गीत थोड़े वास्ते आ बड़ा प्यारा गीत है, इस गीत थोड़ा अवॉयड करो कॉल करनी है क्योंकि गीत सुन के जिहड़े लिरिक्स है ना इस गीत दे उह सुणो ध्यान नाल। और यह गीत तुहानू ना मैं अगे भी कई बार कहना हुंदा, कई बार असीं गीत सुनदे होईए ना तुहानू लगता कि गीत यार साडे वास्ते बणिया है, कई बार तुहानू इह फीलिंग्स इस तरह की हो जांदियां कि गीत बस मेरे लिए है। पंजाबी विरसा विद विद द वन एंड ओनली माई डियर सिंह हरजीत हाजिर है आपके लिए।

कि इस गीत में कहिंदे बस मुहब्बत ही है ना, कहिंदे हुंदे आ मुहब्बत ही लिख दी इस गीत दे विच, मुहब्बत ही झलकदी है इस गीत दे विच। कहिंदा जिहड़ी बाती आ दीया नूं जलाउण वास्ते कहिंदा बाती चाहीदी हुंदी है, दीया अकेला नहीं चलदा, बाती की जरूरत तो होगी है ना। बाती मीन्स की है कि जिहड़ी उहनूं थोड़ा जिहा कहिंदे आ ना जगाना दी आ, उहनूं जगाउण वास्ते लाइट चाहीदी है, ते फिर वो उत्थे बाती दा बस यूज़ कीता गया। दीए चलाने के लिए बाती की जरूरत तो पड़ेगी।

0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है 3 बेडरूम 2.5 वाशरूम हन हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है 12x30 फुट दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है पिछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222

0: रेडियो प्रोग्राम देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नाल जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडा अपना होस्ट तेजिंदर सिंह सिद्धू
1: ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ। लाइक हम एडुकेशन कंसल्टिंग फर्म है, हमारी 7 years हो गए हैं हमें बिजनेस में। हम उन्हीं एडुकेशनल प्रोग्राम्स में डील करते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड है। गवर्नमेंट हर किसी कॉलेज के हर किसी प्रोग्राम को फंड तो करती नहीं है जी, कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनपे, अगर वो प्रोग्राम खरा उतरता है तभी गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करती है प्रोग्राम्स को
1: जी।
2: तो हमारे पास गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स है। आप आसान वाले कोर्सेज करना चाहते हैं तो हमारे पास फुली ऑनलाइन कोर्सेज है जिनमें असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है। जितने ही हमारे क्लाइंट्स 20 years की एज से लेके 75 years तक की एज उनकी, घर के कंफर्ट से 2 से 3 घंटे लगा के फुली ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, फंडिंग हासिल कर चुके हैं $30,000 to $100,000 की, जिसका हाफ पैसा क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स ग्रांट्स ग्रांट्स। आज के टाइम पे ग्रांट्स का वर्ड यूज हो रहा है, 1 अगस्त के बाद ग्रांट्स वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ लोन लोन लोन यूज होगा। अगर आज फैमिली ऑफ 4 एनरोल करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, फुली ऑनलाइन आसान सा कोर्स करते हैं जी, घर बैठ के घर के कंफर्ट से अप टू 80,000 की फंडिंग बनती है, जिसमें से $40,000 तो ग्रांट ही है जो वापिस ही नहीं करना आपने
1: जी।
2: अब बाकी जो $40,000 है वो 1.5 साल बाद आपने देना स्टार्ट करना, किस्तें शुरू में नहीं देना स्टार्ट, किस्तें 1.5 साल बाद किस्तें स्टार्ट होती है 40,000 के लोन की, ऑप्शनल लोन की, और आप उसे 10 साल में पे करते हैं, सिर्फ 2.5% पूरे साल का ब्याज है, मतलब 40,000 का आपने 44,000 देना 10 साल में। एक तो इतना बिना क्रेडिट चेक के, बिना सिक्योरिटी के, बिना कोलेटरल के आपको लोन मिल रहा है, ऑप्शनल लोन, साथ में ग्रांट्स लीजिए ना, आप लोन तो ऑप्शनल है। आप अगर उबर ड्राइवर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप

0: लाइक अनएम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको अच्छा बेनिफिट है इसका, एज लिमिट कुछ है नहीं
1: जी.
0: आप स्किल हासिल करते हैं, फंडिंग हासिल करते हैं, हमारी हमारी फीस आपका फायदा हाथी जितना है, सफेद हाथी जितना, हमारा फायदा सिर्फ चीटी जितना है जी. हम हमारी नजर हमारी गुल्लक पे आपकी फंडिंग पे नहीं है. हमारी फीस 199 से $499 है, कोई परसेंटेज कोई कमीशन नहीं है. नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, नोटिस ऑफ असेसमेंट, और जितनी आपकी इनकम कम है, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड आप प्रोटेक्टेड पर्सन आप हैं, पीआर सिटीजन है, जितनी आपकी इनकम कम है $70,000 से उतना ही आपको फायदा है. फैमिली साइज ज्यादा है, ज्यादा फायदा है. एनओए पे जितनी कम इनकम है उतना ज्यादा फायदा, मतलब कोई हेराफेरी नहीं है, इट्स ओरिजिनल, कोई कैच नहीं है इसके अंदर. गवर्नमेंट की चीजों में फंडिंग करती है, गवर्नमेंट एजुकेशन में भी फंडिंग करती है, नो कैच. फीस हमारी जो छोटी सी फीस है वो भी काम होने के बाद देनी, जब आपके अकाउंट में फंडिंग आती है, आपके आपके आपके अकाउंट में फंडिंग आती है, मेरे अकाउंट में नहीं आती. कॉल करें 437-264-3175, 437-264-3175, उन्हें कॉल करो 437-264-3175, उन्हें असेसमेंट कराओ, ऑफिस आओ, 437-264-3175
2: जी. बहुत बहुत शुक्रिया
1: मेहरबानी. थोड़ा ध्यान ना, मैं तुम्हें समझा दिया कि जड़ी लोन आ वो तो अगे जाके भी मिली जाना, पर जी ग्रांट आ वो बंद हो जानी अगस्त तो
2: बाद. अगस्त विच हां जी,
1: जड़ी गवर्नमेंट की ग्रांट हुण बंद कर रही है, बहुत दित्ती है गवर्नमेंट ने, वह लानी है तो हमने तुम फिर उन्होंने लै सकते हो. ग्रांट तुम वापस नहीं करनी होंगी, पर लोन जो होंगे वो फिर हौली हौली हौली पेमेंट करने की बाद में
2: जी. बिल्कुल. तो नाल दी नाल पीयरसन किचन कैबिनेट एंड रेनोवेशन की मैं जानकारी दे दें, ए टू जी रेनोवेशन का यह काम करते हैं, मैनुफैक्चर करते हैं तो इंस्टॉल करते हैं क्वार्ट्स से सॉरी किचन कैबिनेट्स क्लोजट्स से बार्स, तुम इन्होंने को मैनुफैक्चर करवा सकते हो, इंस्टॉल भी करते हैं. तो इन्होंने को अपनी सीएनसी मशीन लगे हुई ने डोरस की कटिंग के लिए, यह फैब्रिकेट करते हैं ते इंस्टॉल करते हैं क्वार्ट्स ते काउंटर टॉप्स, वो भी बहुत ही वधिया कॉम्पिटिटिव प्राइस के उपर. लीडिंग मैनुफैक्चरर्स ने यह कस्टमाइज्ड वैनिटीज बनाने अपनी पसंद दी जिदा दी मर्जी कस्टमाइज करके वैनिटीज बनवाओ. तो इन्होंने को सारिया कंस्ट्रक्शन सप्लाइज भी लै सकते हो, प्लंबिंग हार्डवेयर इलैक्ट्रिकल सप्लाइज भी है इन्होंने को. पहुंचना है कैनेडी एंड ग्लिडन के इंटरसैक्शन से, 271 ग्लिडन रोड यूनिट नंबर 5 ब्रैम्पटन के विच, ते पीयरसन किचन कैबिनेट एंड रेनोवेशन तो रंजीत सिंह जी नूं तुसी कॉल कर सकते हो. नंबर है 647-400-4550-647-400-4550, इन्हां दा नंबर है.
1: और जी मैं ए एन जे आटोमोटिव रिपेयर की जानकारी दे दिया, रिपेयर करते हैं हर तरह के मेक एंड मॉडल की है, डोमैसटिक हो इंपोर्ट कार हो, और लंबे समय से इस फील्ड में ने. अजक स्पैशल आया उन्होंने टायरों के उत्ते ही अलाइनमेंट कर देंगे तो नाल ऑल काइंड सस्पेंशन वर्क हो गया, इंजन वर्क हो गया, ब्रेक एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह, तो जे एसी रिपेयर करवानी है, रस्ट प्रूफ का काम हो गया, इस तरह काम करते हैं. 91 हेली रोड बोल्टन हाईवे 50 ते मेफील्ड के कोले ने, होम डिपो दे बिल्कुल नाल ए एन जे आटोमोटिव रिपेयर. नंबर है 905-857-7596
2: जी,
1: 905-857-7596 टेलीफोन नंबर है जी.
2: स्टूडियो नंबर 905-564-5444, 905-564-6444 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈਏ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਦੱਸੋ.
1: ਕੋਈ ਲਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਗਮਾ ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ.
2: ਠੀਕ ਹੈ, ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ.

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6474-1557।
2: ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਦੋ ਬੋਲ ਲਾ ਦੀਏ।